श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। सो दिस आवर फाइनल भजन टेल्स अस दैट हे आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, दैट वी शुड यूज द आईज फॉर लुकिंग एट द वेरी ब्यूटीफुल मूर्ति ऑफ भगवान। हे शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, द हेड बो बिफोर भगवान। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, यूज द टंग फॉर चैंटिंग हरि नाम। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा ने हाथ की, डायमंड एंड पर्ल्स विल नॉट ब्यूटीफाई द हैंड, बट है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। द हैंड्स दैट ऑफर द भगवान इज इंडीड अ ब्लेस्ड हैंड।

0: कटेगी ये अब जिंदगी रोते रोते,
1: कटेगी ये अब जिंदगी रोते रोते, ये कह कर गई है खुशी रोते।
0: लाइफ विल नाउ पास अस बाय क्राइंग, हैप्पीनेस हैज सेड दिस क्राइंग एज वेल। आई नेवर थॉट दैट इन माय लाइफ दैट हैप्पीनेस वुड बी एंग्री विथ मी। Life will now pass us by crying. I am worried. The moon and stars in the sky are worried. The moonlight has departed. I will now in this life pass it, rote rote.

याद आ गया है, इसी तरह एक गाना चल रहा था कहीं पे, तो एक शेर पे मुकर्रर की आवाज आई तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सर्व

तुम्हारे बिना रही कैसे सकती हूँ। तुम पेड़ हो तो मैं उसका एक पत्ता, तुम सरोवर हो तो मैं उसकी मछली, तुम्हारे बिना

0: You're listening to Subah with Alicia, your number one morning inspiration program.
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन.

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

0: क्या कहा डॉक्टर ने?
1: बस टेस्ट लिया आज, रिपोर्ट आएगी कल, फोन करके बताएंगे।
0: रिपोर्ट चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है माँ जगदम्बा ने हमारी सुन ली।
2: अभी अब तो हमें माँ

0: बधाई हो कोमल बहन, बधाई हो।
1: लगता है माता ने आपकी सुन ली है,
0: आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी।
2: कहाँ पंडित जी, नहीं सुनी माता रानी ने हमारी।
3: हेलो, सॉरी हंसराज जी, हमारे कंपाउंडर ने आपको गलत रिपोर्ट बताई है। कंग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है।
4: प्रेग्नेंट?
0: मैं ना कहता था माता

ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्भोफलचाडुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदित्याय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुत

कुमार धवला या शुभ्रावस्थावृता या वीणावरदंड तन्न मकरा या श्वेत पद्मा आसना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्राप्ति तिरभिर देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जायापहा। एक बार बोलो सी शारदा देवी माता की जय।

श्री गुरवे नमः। ओम रामयाय रामभद्राय रामचंद्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पताय नमः। एक बार बोलो अयोध्यापति रामचंद्र की जय।

राम जय जय राम। एक बार बोलो अयोध्यापति रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे भक्तों, वेलकम वंस अगेन टू प्रवचन इन अवर हिंदू रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन रेडियो टीवी जागृति। अगेन आई विश टू से स्पेशल थैंक यू टू द मेनी मेनी मेनी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स टू ऑल द पर्सनल हियर एट टीवी एंड रेडियो जागृति। अगेन माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एफर्ट्स इन हेल्पिंग अस टू रीच आउट द वर्ल्ड लोकली regionally, internationally. Again, Satya Sanatan Dharma ki Jai. We sing the Ramayana Sumiran.

बंदा गुरु पर कं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर बंदा अवध भुआ सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन

चलियो चित्रकूट ही तो ही काला, शंकर अपनो रूप छिपायो, तुलसी चित्रकूट कहाँ आयो, फटिक शेपल पर बैठे जाए, राम लक्ष्मण लसा लसा बचराए, जय राम सीताराम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार बोलो, अयोध्यापति रामचंद्र की जय।